ओड़िया पे ही करना त्यो कला पे ही तारी है, देखे किता अपना दर कची पकी सारी है, जो आया सो चल सी सबको आई वारी है, जिसके जी प्राण है के उसाई मन सारी है, अपन हती अपना आपे ही का सवारी है।

गुणे हो होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए। जे बड़े आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करकै कीती रात। खसम विसार है ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सत गुर सत पुरखा, बिनो करो गुर पास।

सवैया पाएंगे हे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ। राम रही पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो। सिमत सा

समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत अपने दरों घरों सिखी सदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरियां करनिया आप जी दे हाजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दार प्रवान होवे

0: अंतर पूजा अपने कदे बास जमतुर का भाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए त्रंदा महला पहला
1: मांस खाने करने बाद श्री ब्रातिल का काग तिनकर ब्राह्मण पुरे रात उन्ना प्यायो साथ कूड़ी रात कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे हार शर्म तनु का डेरा दूर नान कूड़ रहा पर पूर मत्थे टिका तेर तो टिका खाए हाथ छुरी जतक साई निर्बस रहो प्राम ले ताले पूजे प्राण अब पाख्या का कुठा बकरा खाना चौके प्रक से ना जाना देखे चौका कड़ी कार उपराए बैठे कुड़िया
0: मात पिटाए वे मात पिटाए वन साड़ा पिटे तन पिटे फेड़ करे न मन जुटे चली प्रेम कहो नानक सच ते आई है
1: सुच होवे ता सच पाए।